नारद जी, तो शतानु जो मेरे भगवान दे दर्शनां नूं जा रहे हो, नारद तुसी तानु जिन्हां नूं मेरे भगवान दे दर्शन मिलणगे, नारद ने तकिया, प्यार वाला मन, ए प्यार वाला कोई तपस्वी अखां विचों अथरू खे रहे। नारद ने कहा, क्यों रोंदा है, तैनू भी किसी चीज की लालसा है, जंगल बियाबान दे विच समाधि लगा के बैठे हैं, तू की चाहता है। इस दियां पुब्बां निकलियां ते प्यार नाल इसने पढ़िया, नारद मेरी तो एको मंग है केड़ी।

आप अदिति जी आस्था वाला जीवन बड़ा स्वादला हुंदा है खुश रहियो है आस्था वाले जीवन में आस है ना इंतजार है ना ये विच बड़ा सुख है ये विच कोई अगम्मी रस है साईं दी याद विच मालिक दी याद विच यादां भी पूरियां हो जांदियां पर प्यारी सत्संगत याद विच भी रहना ये भी अवस्था है मालिक दे दर्शनां दी प्यास विच इस जीवन नूं बतीत करना हजूर फरमाउंदे ने मैं उस तों भी कुर्बान जांदा हां जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तके बल पर जैसा इस प्यास च जीवन बतीत होंदा रहे फिर आपे मालिक मेहर करे प्यारी सत्संगत जे एदियां आसां पूर्ण तां साडियां भी पूर्ण आखो श्री अकाल।

जिन्नी तुदनु तन के आ तेन जम नेड़ नया। कितनी बख्शिश होती किना उते जिन्होंने गुरु नु तन के है आओ तन गुरु नानक दियां बख्शा प्राप्त करने वाली सर्वत्माई पाई प्यार नाल सारे आखो तन गुरु नानक।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चियां नाल गलबात पंजाब विच करते हो ता आप जानता जो हो जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरा चाकरा नाल दा समा उनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकंगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिया, ओ गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकंगे। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़ेंगे, अपना जन्म किवें सफल कर सकंगे। हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे, असि ता उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ ऊंटाई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी ता सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही ता कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी ता अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया ता मुगल राज दा समा सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाप कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेशा दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगो दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा। फिर लोक सुखिए परलोक सुहेले, नान खार प्रभ आपे मेले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

कितने भी चंगे कर्म कर लवे, उदे कर्म कीते हुए सारे निष्फल चले जांदे। जिमें कि 18

अजर गुरु नानक साहिब महल की दरगाह में जुड़ बैठी सात संगत गुरु रामदास पातशाह अपनी बाणी विच फरमाउंदे ने जिन्ना चिर मेरे ते गुरु नानक साहब की कृपा नहीं हुई जिन्ना चिर मेनू गुरु नानक साहब नहीं मिले मेरे ते साहब नहीं तुठे मेरी की अवस्था सी जी। हजूर कहिंदे ने कौन सतगुरु

परम सत्कार योग सत संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागियों दूरों दूरों चल के करोगी धंधिया संकोच के शरदा प्रेम भावना लेके जागत जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में पुजे आके गुरमुख प्यारियां तो गुरबाणी का कीर्तन गुर इतिहास सरवण किया। जिन्ना समा होर महाराज बख्शते ने अज इस पंडाल का पंजवा समाप्ति का दीवान है। सारिया संगतां गज बज के बोल के शरदा भावना नाल जेड़ी संगत बाद विच आ रही है शांति दे नाल गुरु महाराज दा अदब मुख रख के जिथे जिथे जगह मिलदी है सतगुरां नूं हाजर नाजर समझ के बैठना ते लाहा प्राप्त करना। बहुत वड्डी कृपा होवे उदों सतगुर पातशाह जी कृपा करदे ने नगरां नूं गुरमुख प्यारियां नूं घर विच सेवा ते सिमरन दी दात बख्शदे ने। बाकी दातां जरूरी हन जीवन दा निर्वाह माया गुजरान है बहुत जरूरी ने पर मनुष्य दी समझ ज्ञान इस तल ते रुक गया कि अपनी जरूरत नूं मंजिल समझ बैठे। एक मंजिल हुंदी है एक लोड़ हुंदी है जरूरत। जरूरत तो बिना मंजिल ते पुजिया नहीं जा सकदा पर जे मंजिल ना आई ते लोड़ां व्यर्थ गईयां। जरूरत ते मंजिल इनू जटकी भाषा विच समझ लो जो कणक बीजी गई है रे बूटे दी जरूरत है पानी बूटे दी जरूरत है गुडाई करनी बूटे दी जरूरत है। ते गुरमुख प्यारियो मंजिल की है झाड़ निकले दाने पैदा हो। हुण दोवां दा संबंध किन्ना है ते गुरमुख प्यारियो सेवा तो बिना खर्च तो बिना बूटे दी जरूरत तो बिना झाड़ नहीं निकलना। पर जे झाड़ ना निकलिया वो रे पानी व्यर्थ गया। झाड़ की है वो भी तुहाडे सामने दी क्रिया है। गुरबाणी ने तो फैसला किया है आ जिहड़ी बाणी पढ़नी है ना नितनेम करना ये क्यों शुरू किया कीर्तन क्यों शुरू किया कथा क्यों शुरू की लो जे तुसी सच गल समझो इन्हों की लोड़ नहीं सी। ये मजबूरी है मनुख की समझ लो गुरमत विचों एक सानू अख दती है एक गुरमुख प्यारे वो कन दता है फिर मत दती है समझण वास्ते। जेड़ा आदमी देख के समझ जावे उनू बोलने दी लोड़े नहीं हुंदी। जेड़े बंदे नू देख के समझ आ जावे आ चीज आ है उनू बोल के दसण दी लोड़ नहीं। जिनू दिखे ना उहदे वास्ते बोलना ही साधन है। अंधा बंदा उनू कहना पऊगा तेरे मूहरे चिक्कड़ है भी पासे हो जा उत्थे बोलने दी लोड़ पई।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨੀ। ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਮੂਹਰੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੰਡੇ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇਗ ਵਰਤੂਗੀ ਹੁਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਲੈ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ।

आज पूर्णमासी दा ए समा ते पूर्णमासी हो जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रां च विसाओ हिरदे ते विसाओ।

पिताजी मेरे नंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिताजी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे ननकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहा है, सड़ जावण ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दिया पुब्बा निकल गई। कालू हुण ता रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नु की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नु मुखातब होके कहंदा की

अरदास सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे घर च दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन स्नान किया, कर दी पाठ ते दही रिड़काउंदी है, दही रिड़के सोना मक्खन कढे। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखिया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इहनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लैंदी, ते कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोलदी आं कि तू पहले मक्खन मूंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाणी भैण दे हत्थां तू मक्खन चुक के मूंह च पा लैंदा। अज वी ओही भैण वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा। तली उत्ते मक्खन पिया है, बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उड़िया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सचिव पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने कीर्तन की समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सचिव पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सच्चे पातशाह? अदूर कहण लगे हां मरदाने, तारां भी कई तरह दियां हन। एक तार जेदे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फायदा बन गईआं न पुराने आरती तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी मरदाने। एक टेलीग्राम दी तार मरदाने, एक राग दी तार है, ए जरा कीर्तन हुंदा है ना, ए भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सतगुरु जी मरदाने नू उपदेश देंदे ने। किसे गुरमुख ने लिखिया है कि तार विन दी चीजां परोम दी है, तार विन दी चीजा परोम दीए, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी, तार विच ही शब्द परो के ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी। पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विन दी चित चुराई जांदी। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी? मरदाने है नेत्र बंद कर छेती पहुंची, मरदाना अगे ही चाहुंदा सी 12 सालां तों विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तों। नेत्र बंद कीते, खोल दे जो खोले, की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानकियाणे दियां गलियां च पिया जांदा है। आखो सही वाली, पर मरदाना काला है, 12 सालां तों बाद घर आया है, एना कलम काला है। हजूर कहन लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा जी ये बचन करते सन के भाई जिस वेले गुरु नानक तलवंडी आया ते हजूर ने मरदाने नु क्या, मरदाने ए पढ़ की

अगे अगे मेरा धन गुरु नानक जपाउंदा जा रहे है सत करतारी ते पिछे 33 करोड़ देवता मेरे धन गुरु नानक दे तलियां दी खाक चटपाउंदा आखो श्री वाहिगुरु। ले मरदाने हुण बोली ना बेबे नानकी दी आस पूर्ण करनी है। हजूर आए अडोली आके बेबे नानकी दी हथां तू मक्खन चुकिया ते प्यार नाल वचन कीता बेबे बोल सत करतार। बेबे दे कन्ना च सत करतार दी आवाज पई सारी सुरत कन्ना विच लिया के ए आवाज तो मेरे वीरन भी जापदी है जो नेत्र खोले बेबे ने की तकिया जिस मूरत दा ध्यान पई तरदी सा मूरत सूरत बन के मेरा वीर सामने खड़ोता है। वीर मेरा निरंकारी वीर वीर जी आ गए हो हां बेबे तेरिया अरदासा नु सुन के आ गए। बेबे उठी तन गुरु नानक दे चरणा ते मत्था टेकन लगी मर्यादा पुरुषोत्तम हजूर ने बेबे दा हाथ बेबे दा सिर अपने हथां ते लै लिया ते वचन कीता बेबे मत्था ना टेक तू वड्डी है आखो सिख लै रोक पई बेबे वीरवे तू वड्डा है कि मैं वड्डी तू वड्डा है जिसने कलयुगी जीवां दा उद्धार कीता है सज्जन सगनू संत बनाया है वली कनारी दा मान तोड़िया है पत्थर पंजे लगा के मोम करन वाले तू वड्डा है कि मैं वड्डी ना बेबे मर्यादा भी रखी पर वीर माता नू मिले हो कि नहीं बेबे पहला तेरे कोल आए मां नू भी मिले हजूर आए अगे माता तृप्ता बेसुध पई हजूर ने बड़े प्यार नाल जाके गलुंगड़ी पाई ते के अम्मा मैं आ गया आंखो सी लाई नेत्र खुल गया। अज माता तृप्ता नू 12 साल दा विछड़िया निरंकारी पुत्र मिले आंखो श्री वाहिगुरु मत्था चुमिया प्यार कीता नानकी लिया चोलिया वाली गंढ लियांदी हुण माता तृप्ता अपने सोहणे पुत्र नू एक चोला पवाया दूजा तीजा 12 चोले पवाते आखो श्री वाहिगुरु वेख वेख वेख करदी है ते कहंदी है नानक हुण ना बार दे नानक जी अम्मी पिता नू भी मिले हो कि नहीं नहीं माता तृप्ता ने कहा नानक फिर पिता नू भी मिले तेरे प्यार दीवाने होए फिर भी हजूर उठे मैं ते कालू कोल आए ते हजूर ने पिता समझ के मैं ते कालू अगे नमस्कार कीती ते मैं ते कालू पुब्बा मार के रोपया कहन लगा ओ नानक अज मेरी अखां खुल गईयां मेरे अगे मत्था न टेक मैं कलयुगी जी बंदा गंदा हां तू रब्बी नूर ना पिता जी मर्यादा रखनी। कालू ने कहा नानक फिर राय बुलार नू मिले हो कि नहीं नहीं पिता जी फिर राय बुलार नू भी मिले हजूर सुर पे अज सारियां नू दर्शन देंदे देंदे जिस वेले राय बुलार कोल आए राय बुलार रो रहा है ते पिया कहिंदा है कि सदा दर्शना दी दात बख्शो आखो श्री वाहे ते अपनी याद कृपा निधान नानक को करो दात नाम तेरा जपी दिन रात तेरा नाम जपी नाम दे सदके नाम ही मिल जाएगा। तो आओ प्यारी साथ संगत आप सारे तन हो जो इस समय उधर इंद्र देवता वस रहा है उधर इंद्र देवता हाजी लगवा रहा है ते इधर तुसी गुरु नानक दे चरणा में जुड़े एक प्यार है। एक वेरी वड्डे बाबा जी दिल्ली दियां संगतां दी अरदास सुन के दिल्ली आए जिथे हुण न्यू राजेंद्र नगर है इथे पहला खूनी नाला हुंदा सी हुण तां बड़ियां आबादियां रसले जंगल ही जंगल सी। बाबा जी ने इथे बख्शिश कीती पर जिहड़े आशिक सन ओह रोज पहुंचदे सन। प्यारी साध संगत पटियाले दे रहण वाले सरदार हरचंद सिंह जी एग्रीकल्चर कमिश्नर पटियाले तो दिल्ली दर्शन करने वास्ते आए राय बहादुर नारायण सिंह जी राधा स्वामी मध्य उन्होंने ठहरे अमृत वेले बाबा जी के दर्शन करने वास्ते जान लगे
تو رائے باد نرائن سے بھی کہنے لگے ہرچند سے ہاں اسی بھی نال چلیں گے جی صدقے چلو جی کار اچ بیٹھے آ گئے اگے کیرتن ہو رہے ہیں امرت ویلے آسا جی بھی باہر تو بابا جی ترتی پٹ کے نیوے بہندے سن براگن لگائی ہے ہن بھی کر لو درشن براگن لگا کے مستی جھوم رہے ہیں تے پیاری سات سنگت بارش شروع ہو گئی سائبان نہیں سی کوئی اتنے چھت نہیں سی باہر ہی دیوان سجیا ہوا سی تو بابا جی نے اشارہ کیتا بھائی کیرتن کرن والے اتنے کپڑے تان دو تان دیتے تے بابا جی نے راگی سنگھ نو کہا اے تو کام پڑھو کیڑیاں آپاں بھی پڑھ لئیے